0: सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 6477066640
1: 647-706-4640।
2: कैनेडा विच प्योर पंजाबी खानिया आते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट
3: डाइनिंग टेकआउट केटरिंग लाइव ट्रक ले आके थोड़ी कार केटरिंग दी सर्विसेज दें देने
2: वेज नॉन वेज केटरिंग ताजिया स्वादलियां मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट
3: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 6473381972 कॉल करो गुरजीत रंधावा 6473389172।
4: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
5: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
2: पहुंचो 5530 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसिसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
6: इथे पी लाइन लेजर मशीना नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दिया मशीना नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहंदे हो
5: कॉल करो जे एन गैरी नू
6: 905-459-5533
5: 905-459-5533 ते
6: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट।
7: स्टीफन फर्नीचर की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन सेल। इस साल फेस्टिवल सीजन में अपने घर को भी जरूर सजाइए। अपने मनपसंद बेस्ट क्वालिटी हाई एंड ब्रांडेड फर्नीचर पे कोई भी रीजनेबल ऑफर एक्सेप्टेबल होगा तो फिर आज ही स्टीफन फर्नीचर आए और अपने घर को स्टीफन फर्नीचर के बड़े बड़े ब्रांडेड फर्नीचर पे बड़ी बड़ी डील्स का फायदा जरूर उठाएं। सर्विंग सिंस 1992 फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल टू लोकेशंस टू सर्व यू 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट ब्रैम्पटन 9057900560 6 Marconi Code Bolton 9059519394 Stephen Furniture की धमाकेदार फेस्टिवल सीजन से।
8: ओए इस साल ता इंश्योरेंस बहुत महंगी होगी कार ते ऑटो दी इंश्योरेंस दी किश्तां ने सारा बजट हिलाता।
9: ओ जी अमनदीप कौर इंश्योरेंस एडवाइजर दे हुंदिया कोई फिकर नहीं ए देन के बेस्ट रेट्स इन द मार्केट विद फुल कवरेज
8: होम ऑटो कमर्शियल ट्रकिंग ते बिजनेस इंश्योरेंस ले कॉल करो इंश्योरेंस एडवाइजर अमनदीप कौर होरानो एट 4166182761 4166182761
10: पाजी आज घरे तंदूरी बनाओ पर जो स्वाद तंदूरी बॉयज दे आना ओ घरे नहीं बन पाउना।
11: Hi guys, enjoy karo Tandoori Boys. Veg, non-veg, swadle tandoori khane le poncho. Tandoori Boys.
2: Sanja Virsa Radio da reference den te pao 10% discount. Paath jago ate wedding le, aji catering book karo. 905-956-2111. 905-451-9200. Serving you from 3 locations.
12: Ladies and gentlemen, you are not
13: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा
14: रेजिडेंशियल कमर्शियल रीफाइनेंसिंग डेट कंसोलिडेशन सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस प्राइवेट फंड्स
13: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ डीलिंग विद ऑल बैंक
14: कॉल 6476068110
13: और विजिट sharmamortgages.com।
2: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
15: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया अपने भविष्य नु सुरक्षित करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ले आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ
2: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम लाइफ इंश्योरेंस डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस विजिटर इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस किड्स प्लान RRSP RESP TFSA कॉल करो
3: 6475-5294-647-835-5294
15: शादी दी मूवी बनवाउन लई या रिंग सेरेमनी लई वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन लई याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग लई आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु
16: 647-835-5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: sun, jump our sun, to our sun, happy sun, not it, horsey be sus, bole, sonny hall, susia call.
1: मैं कह जी काफी टाइम तो आप कर दी रेनोवेशन नहीं करवाई ताही ता कर वधिया प्राइस ते सेल नहीं हुंदा
2: शम्मी पठल होरा नाल करो गल कर दी रेनोवेशन करा के लिस्ट कर देने वधिया रैकेट प्राइस ते सेल करवा के देंदे ने
1: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछानिया नाम मल्टी अवार्ड विनर ब्रोकर शम्मी पठल
2: वधिया रैकेट प्राइस ते कार सेल करवाउन ले कॉल करो 416-917-7763 यानी 416-917-776

अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप द नाम एक है वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप पला अते करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे एरन मिल्स एक्यूरा 9058285800 9058285800 ते कॉल करो।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 Macwin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 905-456-9900
1: HK Movers का हो साथ लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात HK Movers होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल वी मूव इट ऑल वी आल्सो शिप कार्स वी आल्सो डू स्टोरेज 30 इयर्स एक्सपीरियंस वी सर्व विद अ स्माइल HK Movers गिव अस अ कॉल मिस्टर हरमिंदर 416-524-6704 416-524-6704
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Movers
3: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਬੈਸਟ ਫੋਨ ਪਲਾਨਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲਾਨਸ ਚ ਸੇਵਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੇਵ ਟੂਡੇ ਇਟਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ cellularpoint.ca ਤੇ ਵੇਖੋ Cellular Point, more phones, more plans, more choice.
4: A1 केक्स एंड पेस्ट्रीज 1997 तो थोड़ी सेवा करता आ रहा है केक्स पेस्ट्रीज मठियाईयां समोसे ते पार्टी डेकोरेशन भी ले सकते हो नकल करके केक्स ते पेस्ट्रीज बेचन वाले तो बचो ते जसपाल नागरा नु फोन करो
5: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
6: Toronto's number one station, AM 530. Punjabi Versa.

0: desk. Locally covered. Nationally connected.
1: Afternoon, welcome to Dave Tarla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद कर दें तो अड्डा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी अगले एक घंटे विच नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। हरप्रीत सैन जी भी आ रहे ने, उन्हां नाल भी गलबात करावांगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड। अपने ने कोई भी गलबात करनी है, नंबर ने 416-677-0609, 677-0609। जिस तरह जानकारी दिती थी पिछले दिन कि चार मुंडे नु डिपोर्ट किया गया है इथों, जिहड़े कोई ना कोई क्राइम किया सी। टोटल 100 तो वध डिपोर्ट कर दिते ने। पिछली बार जिहड़े डिपोर्ट किए थे पलविंदर सिंह, जसमेर सिंह, साहबजोत ते अमित जो बाजवा, इन्हां नु डिपोर्ट किया है। वैसे जे देखा जाए मई 9-2022 की गल है, बीसी दे विच इक कपल सी जिहड़ा घर दी सफाई करवाउंदे सी किसे तों, जिहड़े सफाई करन गए सी उन्होंने ही उन्होंने कुट कुट के मारता। थोड़े बहुत जिहड़े पैसे सी उह लैके भज गए, बाद तां फड़े गए सी। और जदों भज्जे ने उन्होंने विच गुरकरण सिंह ते खुशवीर तूर ते अभिजीत सिंह ने, ते इन्हां दे फर्स्ट डिग्री दे मर्डर लगे ने। ते उन्हां दा परिवार कह रहा है कि काश इन्हां नूं पहलां ही डिवोर्ट कर दित्ता गया।

0: जी हाँ, चांदी के फैंसी सेट, चांदी की बैंगल्स और चांदी की पायल।
1: इतनी बस नहीं, जेंट्स ने चांदी के कड़े, चांदी की चेन, चांदी के ब्रेसलेट,
0: बर्तन और चांदी के किसी भी तरह का सामान लेने के लिए वन एंड ओनली सिल्वर हट
1: फोर एंड अवनीजर इंटरसेक्शन पे गुरुद्वारे बाई प्लाजा के बीच सिल्वर हट
0: 6473393521
1: 6473435 4525 अवनीजर रोड ब्रैम्पटन
0: सिल्वर हट
2: वे जिथे चलेंगा चलूंगी नाल तेरे वे टिकटा दो ले ले
3: लेनियां होन या चार बिजनेस लई जाना होवे या फिर घूमन लई इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट हर तरह दे ट्रैवलिंग पर्पस लई कांटेक्ट करो एयर टिकट्स इंश्योरेंस पासपोर्ट एंड वीजा सर्विस ओ वी रीजनेबल प्राइसेस ते स्पेशल ट्रैवल पैकेजेस भी अवेलेबल ने कटारिया टूर एंड ट्रैवल 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा कॉल 9056781200
4: सही सुनिया बई जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है जलेबियां पकौड़े समोसे टिक्कियां व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां स्वीट महल दी वेज नॉनवेज आइटम्स ले डाइनिंग करो या केटरिंग करवाओ इको नंबर कुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टोबिको स्वीट महल ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट
5: ना किद्दा दी तैयारी
6: ओ जी मैं रसोई नो निगाह मारी देखिया ग्रोसरी मुक गई सारी ते फिर मैं बेस्ट एशियन ग्रोसर दी खिच लई तैयारी
5: मेनू पता है आज ग्रोसरी दे नाल नाल आओ बारो खान पीन दी वारी क्योंकि इना कुल मिलदी है वैरायटी सारी
6: जी हाँ बेस्ट एशियन ग्रोसरी स्टोर जिथे ग्रोसरी ते रेस्टोरेंट दोनों ने जिथे तुहानू मिलेगा फिश गोट करी तंदूरी नान ते स्पेशल देसी स्टाइल पिज्जा टिफिन सर्विस भी प्रोवाइड कर देने बेस्ट एशियन ग्रोसर इको प्लाजा विच तिन्नो ग्रोसरी देसी स्टाइल पिज्जा एंड रेस्टोरेंट कैम्ब्रिज कॉल 519-621-777

0: सो पेमेंट 6 महीने की करनी है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है। 905-450-2828 नंबर है, 905-450-2828 जी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी,
0: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
1: जी। सो अज के प्रोग्राम सानू दे दो इतने, अगले प्रोग्राम तक रब रखा, सत श्री अकाल जी।

0: ਹੈਡ ਆਫ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
1: ਫॉर ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ
2: ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
3: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैण लई, Community दे जाने पहचाने अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नूं मिलो.
4: कोई case refuse हो गया या appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था, CIC Immigration, हुणे ही call करो, 416-456-6161
5: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
6: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
7: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते
5: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
8: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
1: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
2: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
0: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नूं कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381। Solution to promote your business. Days per days, prime time radio and TV. Tohade ang sang 24 ghante satto din. Hun tak Days per days prime time radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vada karan waste Days per days radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551.

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलने लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
3: GTA दे होम बायर्स मिस ना कर जायो। पैराडाइज डेवलपमेंट्स सेल कर रहे ने टाउन होम अते डीटैच कर मिल्टन, ब्रैम्पटन, सीटन अते विटबी दे विच। कीमत सिर्फ 629,990 डॉलर तो ते नाल 130,000 डॉलर तक दे डिजाइनर फिनिशेस, HST रीबेट्स अते बहुत वड़ियां सेविंग्स दा फायदा लो। आज ही विजिट करो paradisedevelopments.com, paradisedevelopments.com।

एसयूवी लेना, टॉप टॉप टॉप द नाम एक है, वो है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे, एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800, 905-828-5800।